0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।
1: मेरे धन भी
0: जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिचर शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। बस आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में। और चले भजन यात्रा प्रोग्राम में, पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों के लिए और सभी

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। भजन जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर बेला जी की आवाज में ये सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

चालू कीजिए बॉम्बे बस बीच की गई रेडियो एस बी एस के जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अबकी बार खास सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पंडित जय शंकर जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना। चले आपकी बार एक सुंदर राम जी का भजन पेश किया जा रहा है और होगा प्रोग्राम में खासतौर पर अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले सुंदर भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आज की इस शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

WSBS की जरिए हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अब की बार खास तौर पर श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए। जरूर सुनते ही रहना।

0: रेडियो SBS की जरिए सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं बजरंग बाण की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।
1: रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी है, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी है। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

सुंदर सा बजरंग बान बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ और शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों आज शनिचर है, शनिवार का दिन है, वीकेंड है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड। बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का पूरा

लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के तकरीबन 9 बजे तक प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। यहाँ से हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर, जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, जिसमें पुरानी से पुरानी नकमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी सुनने वालों को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। पद्मश्री

पर मशहूरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। फिल्म का नाम मधुमती। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। चले फिल्म मैं चुप रहूंगी, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: का नाम था मैं चुप रहूंगी। चलिए आज के ये प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम है मजबूर।
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था,

मुकी सौलत जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनोखी अदा फिल्म का नाम होगा आपकी बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं और आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर

श्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और अक्षय की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और वो भी खास तौर पर शमशाद बेगम और तलत महमूद जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और अब की बार फिल्म बाबुल का गीत पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

और रेडियो एस बी एस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मन्ना डे और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसपीएस के जरिए गाना बस पेश की गई मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो एसपीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम सन गणेश्वर। दरहक शहर से कमला, कमला की तरफ से उत्तराखंड शहर के रहने वाले भाई और भौजी के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में बधाइया के साथ बस पेश किया है। इसी तरह से आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम एक फरमाइश जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, तकरीबन 11 बजे तक जरूर आप सुनते ही रहना।

जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है लाइव की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। किशोर और आशा जी के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ फिल्म कब क्यों और कहां, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए धर्मेंद्र का एक और मूवी की ओर, फिल्म की ओर, तुम हंसी मैं जवान। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। तो रूप की रानी मैं चोरों

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर। हम आपको ले चलते हैं अपनी बार फिल्म दुलारी की ओर। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है कि मिल मिल के गाएंगे। काफी पुरानी फिल्म है, फिल्म दुलारी। उन्नीस सौ 1949 का फिल्म।

रफी और लता जी की आवाज में फिल्म दुलारी का गीत पेश की गई। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं यसुदास की ओर। हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो यसुदास की गाने बहुत पसंद करते हैं।

यसुदास के आवास में पेश की गए चार दिन की जिंदगी है। फिल्म का नाम एक बार कहो, 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म का गीत यसुदास की आवाज में बस पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। किशोर कुमार

कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम होगा दुल्हा दुल्हन।

उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की ओर। एक नारी दो रूप फिल्म का नाम होगा। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना आज की प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। संसार है एक नदिया, हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकीस के बाद हम आपको आज की प्रोग्राम में फिर से ले चलते हैं लता मंगेशकर की ओर। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए। चले एक गाना महेंद्र कपूर जी की आवाज में पेश किया जा रहा है हमरा।

संगीत प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये गाना पेश की गया। आसरो मीठे रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से महेंद्र कपूर होगा साथ में आशा भोसले।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज जबकि शनिवार का दिन है, 18 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी एन शारदा, मरहूम मोहम्मद रफी एन शारदा प्रोग्राम में जब भी ये दिल उदास होता है, सीमा फिल्म का नाम।

2020 में रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03025656560। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में।

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई अभिजीत की आवाज में आज के प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई है अभिजीत की आवाज में, अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गीत अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है खासतौर पर उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर तुरंत हम आपको ले चलते हैं। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और पहला गाना होगा हरीश खान की आवाज में, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और गाना का बोल है छूकर मेरे मन को। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, रखिलियो और साथियों की आवाज।

है तू धड़कन में है तू पीस की गई प्रोग्राम में रखिलियो और साथियों की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में विम डमरी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए विम डमरे की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार प्रोग्राम में सतीश की आवाज।

रेडियो SBS के जरिए सतीश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, लोकल टाइम का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में मरहूम नदीम खान की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक मेरेंगे मैथिली पेश किया जा रहा है। मरहूम नदीम खान की आवाज में

और रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और पेश हुआ है खास तौर पर लकी सिंह की आवाज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस आज के लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं शहीद वाहिद हुसैन और मधु की आवाज में एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का। चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है प्रवीण की आवाज में, गाना को आप सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मस्ती मेटली अभी आपने सुना। खासतौर पर परवीन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई ये खास गाना जो अभी आपने सुना, लाइव के जरिए रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है खासतौर पर लोकल टाइम का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में उमर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। उमर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई उमर की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और बहुत से सुनने वालों भी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनते हैं।

सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं। वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। प्रवेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, दिल है कि मानता नहीं।

रवीस के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज की इस लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आसरा उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना दिल है के मानता नहीं बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में संजय जोधा की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार गाना पेश होगा

रेडियो SBS के जरिए संजय की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: चलिए एक आखिरी गाना बस आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और इसी गाना के साथ लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ गए है। आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ मुझे इजाजत और आज्ञा दीजिए।
1: परवाने से परे चला जा,
0: बस हम आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। लोकल टाइम का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि करमलाल दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

रेडियो बेस के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहाल इश्क।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

तुम निकाह से आपने सुना, सलमा आगा की आवाज में दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वाज आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता अफान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkelher via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामने में श्रद्धा कपूर, दिल्ली तेज खजौहंदौर तुषार जोशी। खजौहंदौर अलका याचिक कम तो फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कौन, क्या हुआ तुझे।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया।

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजान दूर चित्राएं के एंड द फिल्म काटे कॉम्त इश्क समंदर.

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी। ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitong Kelleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lakta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी इज uit de film खूबसूरत. Uit de film Kabir Singh komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Mithun en Arjit Singh komt. तुझे कितना चाहने लगे हम.

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसके संग तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद। दिस लीजिए क्वाम आउट ऑफ द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव दा फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में, मेरे सैया सुपरस्टार।